साथ संगत दे विच आत्मक तौर ते अंदरले जीवन वल्लों रूहानी जीवन वल्लों स्पिरिचुअल लाइफ वल्लों आत्मक जीवन वल्लों जो बिल्कुल खत्म हो चुका है मरिया होया इंसान है केंद्र साधु दे टच दे द्वारा साधु दी जो एनर्जी दी फील्ड है उस दे विच आंदिया ही केंद्र ओ इंसान भी द्वारा जिंदा हो जाता है उस दे विच भी रूहानी जीवन दी शुरुआत हो जाती है। साध के संग सदा प्रफुल्ल साधु दे संगत दे विच हमेशा इंसान दी जो सोल है वो डिवेलप करती है वो ब्लूम करती है। इस करके गुरु बाबा जी भगत रविदास जी दे इस आइडिया नू बाणी दे राही सपोर्ट करते हैं उस दे नाल सहमत हैं कि गुरुआं दी भगतां दी एक ही विचार है वो ये है कि अकाल पुरख वाहिगुरु जो प्राणा दा नाथ है वो सबना दा प्यारा है अगर उसनू मिलना है तो एक ही ढंग है वो है साध संगत प्रेम नाल गाओ।

बहुत कमाल की गल बाबा जी बाणी चाकते हैं कि जो साधुओं का संघ है वो सिर्फ इत्थे ही काम नहीं आता, किसी होर दुनिया च भी काम आता। बाणी का प्रमाण सुनो, कहते हैं

साधु मित्र हन जिन्होंने ढूंढ सज्जन संत पक्के हैं, जिन्होंने पक्के हुए आत्मक जीवन दे विच प्रपक्ष साधुओं के नाल अपनी मित्रता पाई है, कहिंदे हन ऐ जिहड़े कच्चे हन इन्होंने तो इत्थे ही छड़ जाना है, कहिंदे हन तुहाडी रूह नूं ओह खुआर नहीं होण दिंदे, तुहाडी रूह नूं भटकण नहीं दिंदे, साधु संत दोनों जहाना दे विच तुहाडी जो है वह संभाल करते हैं। इस करके साध संगत नालों वड़ा होर कोई टंग ही नहीं है भक्ति का, इस करके होर सारिया विधियां जड़िया हैं वह साध संगत के मुकाबले दे विच कुछ नहीं हैं। प्रेम नाल गाओ।

बहुत प्यारे वचन हैं। ये शब्द इतना इतनी प्रफाउंडनेस दे नाल भरिया पिया है कि असी इसनू अपनी जिंदगी अगर कमा लईए, इसनू वरत लईए, तो साडा जीवन भगत रविदास जी की तरह बदल सकता है। भगत रविदास जी कहते हैं, फिर मैं की कीता, जोई जोई जोरियो सोई सोई फट। जो भी अपने अंदर सुभा जोड़े हुए सन, सुभा पकाए हुए सन, इन्वेस्टेड हैबिट्स सन, कहते उसनू मैं सारे नू सारे नू एक कचरा समझ के पाड़ दिता। जोई जोई जोरियो, असी कई दफा एक दफा किसे नाल नाराज हुन्ने हां, फिर उसनू असी अपने अंदर जोड़ लेने हां, उस नाराजगी नू फिर सारी उम्र रखते हैं। किसी ने अगर सानू कोई बुरा शब्द किसी वेले कह दिता है, वो फिर सानू सारी जिंदगी याद रहिंदा है। जदों भी उस परसन नू असी देखते हां, उस रेफरेंस दे विचों देखते हैं, उसे रेफरेंस के विचों देखते हैं। मेरे नाल किसी ने बुरा किया है, उसनू असी भुला नहीं सकते। कहते जोई जोई जो रहे हो, अगर 10 साल पहला किसी इंसान ने कोई गलत काम किया है, वह सुधर भी जाए, तो साडिया निगाह दे विच जदों असी उसनू मिलांगे देखांगे, तो असी यह कहांगे सानू पता है 10 साल पहला किदां दा हुंदा सी। This is our normal behavior. 10-15 साल पहला अगर किसी इंसान का जीवन किसी होर किस्म का सी, जो कि बहुत एक्सेप्टेबल नहीं सी, लेकिन वो इंसान अपना जीवन बदल लेता है। उसने तो जीवन बदल लिया है, लेकिन लोगों ने ओपीनियन नहीं बदली अपनी। लोग उसनू यही कहते हैं कि जानते हैं असं इसनू 10 साल पहला की करता हों, उसनू क्रेडिट दो, उसनू शाबाश दो कि इसने अपना जीवन 10 साल के कितने का कितने ले आता है, बदल लिया है, ना कि तुसी उससे नू ही देखना है। बाणी दे विच एक साड़ी जो अवस्था है, साड़ी जो आदत है, उसके प्रति बहुत खूबसूरत लाइन महाराज ने दर्ज की है। कहते हैं, माखी चंदन पर हरे जह बिगंध तह जाए, माखी चंदन पर हरे जह बिगंध तह जाए। जिहड़ी मक्खी है वह चंदन ते नहीं बैठती, उन्हूं त्याग दिंदी है। जह बिगंध, जिथे गंदगी है उथे जाके बैठती, उथे जाके बैठती। तो असी भी अपने जीवन दे विच किसी की खूबसूरती नू, किसी दे शुभ गुण नू जदों देखदे हां, ते नाल दी नाल कोई उहदा कोई ना कोई अवगुण जां कोई उसका पिछला कर्म जरूर देखण की कोशिश करदे हां। भगत जी कहते हैं, मेरिया निगाहां च मैं अपने अंदरों जो भी जोड़िया सी, कहते सब पाड़ के रख दिता। अगर किसी नाल नहीं सी बनती तो उसनू जाके आप बुला ले। कोई अगर मैनू मैला लगता सी तो उसनू आख्या गले लगा के, भाई तू ही मैला नहीं, मैं तेतों भी खुद ज्यादा मैला। जोई जोई जोरियो सोई सोई फाटो, जेड़े गलत सुभा पक चुके सन, आलस का सुभा गलत है, निंदा का सुभा गलत है, चुगली का सुभा गलत है, होमे का सुभा गलत है, उच्चा बोलन का सुभा गलत है, कौड़ा बोलन का सुभा गलत है, ये सारे पक्के हुए सन। कहते सारे दे सारे मैं, दिस वॉज द सैकेंड इफेक्ट ऑफ द साध संगत, कहते मैं इस सारे दे सारे फौरन पाड़ सिते, डिले नहीं की। जोई जोई जोरियो सोई सोई फाट्यो, झूठे बंज उठ ही गई हाट्यो। वह कहते जी झूठ की दुकान खोली उसी मैं, वह उठ ही गई है, खत्म ही हो गई। अखीरली लाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही अर्थपूर्ण है, जिस दे विच भगत रविदास जी आखते हैं, पहला उसनू सुनो फिर उसका असी अर्थ करांगे।

0: जो सास गिरास पियाए मेरा हर हर सोमुर से गुरु मन भाव
1: जनु दयाल होए मेरा स्वामी
0: तिस गुर सिख गुर उपदेश सुना
1: तिस गुर सिख गुर

राग गौड़ी दीप की विच ऋषभ कोमल मध्यम तीवर अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस ते आरोह विच ऋषभ सुर वर्जित है। इस ते जाति शाड़व संपूर्ण वादी षड़ज संवादी पंचम अते समा रात दा पहला पैर है। इस राग विच तुम गाव हो मेरे निर्भौ का सोहिला शब्द दा कीर्तन कर रहे हन भाई अवतार सिंह।

अत कल्याणकारी अत सुखदाई ते अत खुश जायका अत मिठे उपदेश नाल दास दी रुचि है कि सारी संगत ही मुंह मिठा कर दे तां वी चंगा ही है, रल के वंड के छकना चंगा ही हुंदा है। नाले अत मिठा उपदेश रसना तो गावीए, इन्ना क जरूर बोलो जिहदे नाल आप कथे आप सुनने हार होइए, अपना बोले आप सुने।

अत्र लाले ऊर्वशी आशिक न दानद हेत कस्तीम पे याकूत दानद चश्म गौहर बार मां। इसका तर्जमा किसी ने किया है पंजाबी लिखा है

எப்படி பார்க்கிறார்கள் அன்புமான் மகான் மகான் பக்தி குரு துனியாவி ராஜ்பால் குரு துட்டி ஆப் ஜி வஸ்து ஜி முல் கோயில் துணியா கி கோய் வஸ்து முல் வேச்சன் வாழா வீ வேச கே வஸ்து ஹுஷ் ஹோஜான வாழா வீ லே ஹுஷ் ਪਰ ਇਹ ਅਮਲ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਸਤੂ ਆ ਗਈ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਅਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਰਮੋਲ ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਲੀ ਚ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਈ گرو دروہر سائے ہوئے ستار کیرتن سنگھ سید پرواز بابا جی بابا آنند سنگھ جی مہاراج جی نے بچے بڑی انہوں نے بزرگوں نے بڑی سیوا کی پورن مہاپرش کے درشن پیاری سات سنگ جسم ہو جان پیاری ساتھ سنگت ساتھ کے سنگ نہیں کسی کال درشن پیٹت سار بلجیت سنگھ جی نوجوان بچے جنہوں کی ٹولی چ گرو نانک نے نرمولک ہیرا کیرتن پایا اج انہوں کے ادم کے نال آپ سارے بن چاہے ایڈا اپکار ਸਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਫਰਦਾਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਦ ਮਿਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਲਕੱਤੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਘਰ ਕਰਾਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰ بڑی بخشش ہے بڑی رحمت ہے انہوں نے پتا جی سردار گردیپ سنگھ جی انہوں نے دسے ہے کہ بھائی صاحب یہ سب دھن گرو نانک کی کرت نہیں تو بلجیت جس ویلے یونیورسٹی چوں ڈگری لین لگا اتوں کے جڑے افسر سن ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਨਾ ਬੰਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੇਸ ਕਟਾਣੇ ਪਏ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਚੇਚਾ ਇਹ ਲਾਭ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਵਿਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਾ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਭੁੱਖਿਆਂ ਰਹਿ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰੋਜ਼ ਕਿਤਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਅਮਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕੂੜਾ ਹੈ ਅਮਰ ਸਿੱਖੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਕੱਢ ਦੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕੇਸ ਮੇਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰ ਫਿਰ
मेरी खोपड़ी उतार दे। कितना प्यार सुहागण स्त्री भी अपने पति नूं प्रसन्न करने वास्ते सिंगार कर दी है। मेरा पति खुश हो गया, दुनिया खुश हो गई, कलगीधर पातशाह जी का सिख जिहड़ा है वह भी सिंगार करता है। जिस तरह कलगिया वाला खुश हो गए वह भी सिंगार करता है। तो यह सिखी ये सोहने केस के सोहना दाड़ा ये तो सिखी का सिंगार है। आखोश्री का तो सिखी का सोपण जिदे वाल वेखे गुरु चेतिया सिखी की सुंदरता है, ब्यूटी है, जिसनों कायम रखे साडे बुजुर्ग हर समय कायम रखे। तो कह रही सात संगत बड़ी खुशी हुई। राजदीप सिंह ने जिस वे दसिया उन्होंने भी बाबा जी के बड़े दर्शन की तेन बाबा आनंद सिंह जी महाराज कुकरी कई वचन दास आने की तरह दसेगा ये किस तरह बख्शिश करते सर बाबा बाबा आनंद सिंह जी महाराज पूर्ण न जिन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को साक्षात गुरु नानक जान के पूछे। असी रोज पढ़ने हैं पर गुरुग्रंथ जी दे पर मने कोई पागा बाबा जी ने मनी दास छोटा जी असी सावण भादो के दिनों पंजाब बड़ी गर्मी हो जाती है, बारिश भी होती है, वट भी बड़े लगते। आम कहावत है कि सावण भादो की धुप न वेख के जरा जट है ना गोडी करता छड़ के ते संत बन जाता जिमीदार। हम तो नानक सर बड़ा सुंदर स्थान ते उस वेले का बचन है जिस वेले कच्चे कोठे होरे कोई उथे बिजली का प्रबंध नहीं। प्यारी साहब संगत ये बहुता वट लग जाता सी तो बाबा आनंद सिंह जी महाराज दास ने इन्हों नेत्रा नाल तकिया कि सारी सारी रात श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को पक्का करते रहे। मन जो ने जाग दी है भी जाग राती सेठी साहबर ने सुनाया कि गुरुद्वारे नूं अग लग गई, गुरुद्वारा मुक गया, पालकी भी खत्म हो गई। तांबे दी पालकी सी इन्नी मजबूत पर उसका पता नहीं लगा। फिर कह लगे साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की भीड़ आसे पासे हाशिया जड़ा सी ओदे उत्ते अग दा असर होया है। गुरबाणी में एक अखर से भी असर नहीं होया। आप खुश श्री वाहे। फिर किस तरह कहिए भी गुरु जागदी ज्योत है। बाबा जी वचन करते सर गुरु तो जागदी ज्योत है तेरी भावना है। भावना बना गई ज्यो ज्या गुरु नु वेखेगा जिहा वेखे पूर्ण वचन करते कि कीर्तन ए महान दा कीर्तन दे आश धरती फुट के नीवे पे बाबा आनंद सिंह जी महाराज धरती फुट के नीवा पे। किसी ने पूछा बाबा जी ये क्यों। बाबा जी कह लगे धन गुरु नानक दंगत इतने आदमी जो गुरु का सिख माई भाई गुरु नानक के दर्शनों आता है वो चरण पवित्र चरणों की धूड़ी भी पवित्र है। बाबा जी कह लगे नीवे स्वास्थ्य बहनी भी गुरसिखा के चरणों की धूड़ी उड़ के साडे उत्ते पै जाएगी साडा भी उदाहरण निम्रता इतनी जिथे निम्रता है आप उसको जो जाने नीचा सौ गलिए कोई सरदार आ जाए राजा महाराजा आ जाए बैठो भाई अजे टाइम नहीं तो जे कोई कीर्तनिया आ जाए तो उन्होंने अंदर बुला दे पहले उन्होंने जल पानी छका। बाबा जी दर्शन करने वास्ते आए हैं खेचल ना। बाबा जी कहते सर भाई तेरे को कीर्तन का भोजन दिता तेनू गुरु नानक ने शब्द की दात तो कीर्तनी यदि कितनी से महान सेवा कोई है। फिर बाबा जी वचन कर दे सन बच्चे वास्ते मां के दुध सारी ताकत
ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਹੁੰਦੇ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਚ ਪੂਰਨ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਇਹ ਆਤਮਕ ਭੋਜਨ ਪੂਰਨ ਖੁਰਾਕ ਆਖੋ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਮਨ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ

पवित्र सालसरा रोपिया पातशाह, ये तो मेरा बच्चा है, पर जे तुसी कहो तो मैं तुहाडे कुत्तियां दे पैर च बुलवा। तो हजूर ने सालसरा दे सिर ते मेर प्रयास रखिया, अमीर दृष्टि नाल तकिया ते किया, सालसरा जप सतनाम श्री कर हुकुम मस्तक हाथ घर विचो मार कड़ियां बुरियाइया सहत उठे नौ जो जो साल सराय जपदा श्री वाह त्यों मन रजदा त्यों त्यों मन तृप्त होता जाता है। सात नाम आधार मेरा जिन भुखा मैं साल सराय तेन नाम दाता पक्ष नाम जपया कर बाणी पढ़िया कर आए गए की सेवा करया कर जो तानू सफला करना है तो दान पुर करया कर तेरा जीवन सफला ये सब तो वड्डा था। तो अज सालसराय नू प्राप्त होगी धन गुरु नानक पातशाह जी ने बख्शिया है तो उन्होंने गुरमुख परिवारों से भी गुरु की कृपा करी है। तो प्यारी सात संगत अज सालसराय दौड़िया भरन वाला थोड़िया भी तोड़िया भर आओ ये सब तो वड्डा था सब तो वड्डी दात केड़ी सत्संग नाम बाणी तो नाम जपया करो बाणी पढ़िया करो सत्संग विच पाके जुड़िया करो क्योंकि गुरु ने आप जी ने दात बख्शी है। तो जिन्होंने ये दात मिल जाती नाम रूपी धन मिल जाता है उन्होंने दुनियावी धन भी सफल हो जाता है। शब्द की तुक पढ़ के दास कीर्तन की समाप्ति कर रहे हैं जाको मिले ओ नाम निधाना पंत नानक ताका पूर राज विहला तेरी नाम बन योग बनिया तेरा कीर्तन तुसी सारे योगी बने गए। योगी कौन है जो गुरु नाल जुड़ जुड़न का नाम योगी जो कीर्तन नाल जुड़ गया तो राज भी तो ही सफल होता है जो योग हो मेरा राज नरकों में लै जाए तो जो गुरु ने कीड़ा बख्शिया है ये भी योगियों वाले पाके जंगलों में तुर जाए घर बार चले हजूर कहें वो योग परवान है कीड़ा राज बिजला तेरे नाम बनाई योग बनया तेरा की तो आओ शब्द की अखीर भी कुछ पढ़ के दास कीर्तन की करेगा तो अमृत वेले का कीर्तन किसी गुरमुख परिवार ने इच्छा प्रगट की पिता रोज चार हरदेव सिंह जी उन्होंने सर सर्वासव पूर्ण करने वाली आशा जी दीवार के कीर्तन का अमृत वस्त जिन्होंने भागों में चौंकों के बालक आप हाजरिया लाऊंगे। तो किसी गुरमुख परिवार ने इच्छा प्रगट की थी कि मेरे घर भी कीर्तन का वसवा कर दो जी घर घर अंदर धर्मसाल हो सकता है घर घर अंदर भाई साहब जी लिखते हैं धर्मसाल फिर वसवा किड़ा है होवे कीर्तन तो गुरु कह रहे आप जी ने उन्होंने दस पैरा दस देंगे तो कल पांच टू छह बजे तक आशा जी दीवार का कीर्तन उस गुरु परिवार के ग्रह हो रहे हैं कि शाम किसी तरह इतने कीर्तन हो

सब कुछ अर्पण कर। पर मेरे पातशाह कहंदे ने उना दे तन मन अर्पण करी जिन्हां ने अपना तन मन वाहिगुरु दे अर्पण कीते। फिर उना ओ परचून दे मालिक नहीं हुंदे, ओ तां थोक दे व्यापारी हुंदे। थोक विच पदार्थ देंदे ने, लोकां नूं वंडदे हन, पर अपना सब कुछ वारिया हुंदा वाहिगुरु तों।

ऐसे महापुरखां दे सिर्फ दर्शन ही कीतियां ओ पाप मुक जांदे हन खत्म हो जांदे नहीं।

रत्नवा बारू पीत बनाई रचपत रहत नहीं दिन चार तैसे ही ए सुख माया के उज्जो कहां गवा अजनु समझ लच बिगड़ो ना हनी अजहू समझ

मन मूर्ख अजहू नहीं समझत सिख दे हार्योनी सिख दे हार्योनी नानक पा

भावे मेरी जात होची है मेरी पत होची है पर मैं इकला जरूर खटिया जेड़ा आम आदमी नू नहीं मिलता। असी लोग आम जग्यासु जीव सारी उम्र छोटे छोटे लाभां नू वेखदे रहने भाई बड़ा कुछ कमा के बड़ा कुछ पा के चीज की समझ आंदी है कि रब दे नाम तुल कुछ नहीं है। जेड़े मेरे वर्गा कोई गरीब फकीर होवे वो सारी उम्र नसा फिरदा है दौलत दे मगर पर जेड़ा बहुत कमाई कर लवे ओनू फिर पता लगता है कि सब तो वड्डा जो है रब दा नाम है। कबीर साहब कहंदे हन होछी मत मेरी जात जुलाहा हर का नाम लियो मैं।

एक बारी सारे बोलिए धन गुरु तेग बहादुर साहिब। हजूर पातशाह कैसे मनुख दे मन दी।

कौडी बदले त्यागे रतन छोड़ जाहे वाहू का जतन सो संचो जो हो छी बात माया मोया टेडो जात अभागे तै लाज नाई सुख सागर पूरन परमेसर हर ना चेत्यो मन माही अमृत कौड़ा बिखिया मीठी साकत की बिद नैनो डीठी कूड़ कपट अहंकार रिझाना नाम सुनत जन बिछू डसाना ओ माया कारण सदही झूरे मन मुख कवे न उस्तत करे निर्भव निरंकार दातार तिस स्यों प्रिय।

0: You're listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.
1: एचएन जल्दी सबद रही तो एक पुरानी है लेकिन अस्थाई दी तक जो रावदी हुई ऐसी तलाई हुई है

आप जी ने बड़े प्यार दे नाल शरण कीता है। सिंह यूथ वाले सिंह पहुंचे ने तो साहिब गुरु कलगीधर पातशाह जी की बाणी दे नाल तो सारयां दा प्यार है, पर इन्हां दा कुछ ज़्यादा ही है। इस वास्ते इन्हां ने हुक्म कीता है कि तुसी जरूर ही साहिब गुरु कलगीधर पातशाह जी तराना अखीर ते समाप्ति जिहड़ी है वह साहिब गुरु गोबिंद सिंह दी बाणी दे नाल ही करनी है। साडे मन विच ख्याल जरूर सी कि सतगुरां पातशाह जी दा जो तराने हन जां गुलदस्ते आप जी ने अगे कई बार सरवण कीता है तो सतसनी तराने दे नाल समाप्ति करांगे। आओ एक प्रार्थना रचना होर है जो आड़ा चुताला दी है, आओ वो आप जी बड़े प्यार नाल सरवण करो। शब्द कबीर साहब जी का है, आप जी नूं बंदिश दा आनंद जरूर आएगा। इस राग दा नाम लच्छा प्रदीप की राग है जो बड़ा ही पुरातन बड़ा ही पुराना राग है, तो पुरातन बंदिश है, बड़े प्यार नाल सरवण करो।

अब मुहे नाच नू ना आवे, मेरा मन मंदरिया ना बजावे। ये पावन शब्द सरवण कीता है। आओ एक जो के ज्ञानी ज्ञान सिंह अलमत साहब जी की बहुत ही सुंदर रचना जो आप जी ने पंथ विच बहुत ही गायन की है, जो उन्हां दी सब तो पहली हरमन प्यारी जिथे भी कीर्तन करते सन वह रचना संगत विच जरूर सुनाते सन, ते बड़ी कठिन है। आप जी उहदी लिखतकारी ते बंदिश की बनावट आओ अड़ाना बहार की बंदिश है शर्मन करनी कि किस तरह धूम परी जगत में तुमरी। ये आम नहीं किते भी गाई, पहली बारी जा किते किते इस बंदिश असा ने गाई है, तो ध्यान देना ये रचना पहला आप शर्मन करो। बोल जो बड़े औखे ने धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की शिफत की है, ध्यान देना ब्रिज भाषा की ते संस्कृत की चीज है, ध्यान देना। धूम परी जगत में तुमरी, महाबली भीम कंप्यो थर हरे गदा त्याग, चक्रत पयो डंका बजयो रणजीत पे जब ही, घना नाना नाना कर शब्द प्रगट पयो। इस नू उन्होंने कंपोजिशन विच बनिया है, ध्यान देना। इस चीज नू इन्नी औखी पढ़न विच औखी है, पर इस नू उन्होंने बंदिश का स्वरूप दिता है, बड़ा आनंददायक चीज है, ध्यान सरवण करना। धूम परी जगत में तुमरी, महाबली भीम कंप्यो थर हरे गदा त्याग, चक्रत पयो डंका बजयो रणजीत पे जब ही, घना नाना नाना कर शब्द प्रगट पयो, कंप्यो तरणी तर, कंप्यो तरणी तर, धरती कंब गई, कंप्यो तरणी तर, थारा रारा रारा कर इंद्रपुरी, धूम परी जगत में तुमरी। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी आनंदपुर विच जय जयकार हो रही है, सारे पासे तुम पै गई, इंद्र दा दरबार, वड्डे वड्डे भीम जेड़े द्वापर युग दे विच बड़े बड़े बली सन वह भी कंब गए, गदातार वड्डे वड्डे भीम वर्गे अर्जुन वर्गे सारे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की शिफ तो सलाहन देख के उपरों धरती कंबण लग पी, आकाश कंबण लग पिया। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की इन्नी चढ़त है। तो अगला पैरा बड़ा सुंदर है, ध्यान देना। तीर पातशाह दे किस तरह चलते ने, शाना नाना नाना नाना शनक शोम कार, शाना नाना नाना नाना शनक शोम कार, छडत तीर कलगी तर, शाना नाना नाना नाना शनक शोम कार, छडत तीर कलगी तर, सरा रारा सर के जावत तीर, सरा रारा सर के जावत तीर, छतियां चीर दुष्ट सबन के, तरफ तरफ निकसे प्राण, धागे रघुबीर महावीर रण तीर की, गिरत पगरी धूम परी जगत में तुमरी। तीसरा पैरा बड़ा सुंदर है, ध्यान देना। चकर चलत खंड खंड रुंड मुंड कर, खंडा खड़ग तुपक तबर, महा जोद दुष्ट दमन करे। चक्कर न्यांग सिंह धमाले ते चक्कर पाउंदे हन, ते जदों रण मैदान च लोड़ पैंदी है शास्त्रां दी, ते जदों उह आखरी शास्त्र धमाले तो ला के ते चक्कर मार के सिर ला दिंदे सन। चक्कर चलत खंड खंड चक्कर चल रहे ने, चक्कर चलत खंड खंड रुंड मुंड कर, खंडा खड़ग तुपक तबर, महा जोद दुष्ट दमन करे। गंधर्व अलमस्त के प्रभु की जग धूम परी, डरत पई शिवपुरी पेख आनंदपुरी। ब्रह्मपुरी शिवपुरी इंद्रपुरी सारे देवत्या ने पुरिया हैरान हो गया, डरन लग पिया आनंदपुरी देख के। तो ओ ये रचना बड़े आनंद प्यार साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उस्तत अलमस्त साहब जी की रचना।

ये तान गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उस तत आओ समा भी हूँ समाप्ति दे वल पहुँचते पहुँचते भी जे मन में ख्याल बनावांगे कि समाप्ति करनी है तो ताई 35-40 मिनट फिर भी लग जाने हैं क्योंकि अजय आनंद साहब का पाठ या होर एक दो बंदिशा तराने रेंदे ने वो आप जी ने सरवण करा के आओ प्रोफेसर साहब का हुक्म है कि छनकार निराले तीरां दी वो जरूर सरवण करा तराना भी सरवण कराउंदे आओ पहला छनकार निराले तीरां दी जो कि इस तरह की एक संगीतक बंदिश है संगीतक रचना है उहदे विच भी अलमस्त होणा ने एक ऐसी कलाकारी फिट कर दिती है ऐसी कला दे नाल उस नूं बंदिश नूं ऐसा जोड़िया है स्वर ते ताल दे नाल कि तबले दे विचों किस तरह किहड़े किहड़े बोलां दे नाल तीरां दी आवाज़ निकलदी है किस तरह रणजीत नगारा वजदा है ते किस तरह घोड़े दे टापां दी आवाज़ है ये छोटी जी बंदिश है 5 मिनट की आओ ये भी सरवण कर लो उस तों बाद फिर तराना ते आप जी फिर बड़े प्यार दे नाल

सिंह जी महाराज जी, गुरु जी बड़े मर्दे मर्द खुदा थे, बड़े आवदो जाहदो पार सा थे, गनी थे नबी थे, बड़े मुकदा थे गाजी थे, दलावर थे वो खैरे शफा थे, करवाने की मर्ज की वो आले दवा थे, देखने के गुरु गोविंद सिंह थे लेकिन जाहरे खुदा थे। तन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जाहरे खुदा नासरो मनसूर गुरु गोबिंद सिंह, एज दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह, हक रा गंजूर गुरु गोबिंद सिंह। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे विच सारे गुण सन। विद्वान ने बड़ा सुंदर लिखा है, नैण तो नशीले, सतगुरु पातशाह जी दे नैण तो नशीले, मसतीले दो जादू परे, नैण तो नशीले मसतीले दो जादू परे, तनक निहार सब सुरत पलात है, तनक मात्र तनक निहार सब सुरत पलात है, पलकन के तीर करे दैंतन फकीर शाह, रंकन पे दया कर तख्त बिठात है, पलकन के तीर करे दैंतन फकीर शाह, रंकन पे दया कर तख्त बिठात है, एक हाथ माला और दूसरे पे तेग शुभ है, एक हाथ माला और दूसरे पे तेग शुभ है, भक्ति और वीरता की गर्दन चुकात है, फतेह चाड़े आंगन और लक्ष्मी दबाए पग, गोबिंद मरगिंद गुरु जीते नहीं जात है। धन गुरु गोबिंद सिंह मरगिंद की तरह शेर की तरह सतगुरु पातशाह जी कदी भी रण मैदान विच हारे नहीं है, सतगुरु पातशाह हमेशा जित होई। तो सतसंग जी औरंगजेब का ऐलान होया कि मेरे कन्ना विच इन्हां सिखां दी ढोलकी ते चिमटे की आवाज, ते ये जिहड़े सति श्री अकाल दे जकारे छड़दे ने, इन्हां नूं जरा चेतावनी कर दिओ, अपने सिपाहियां नूं कह दिता कि दस दिओ कि मेरे कन्ना विच ये ढोलकी चिमटे की आवाज ना पवे, मेरे कन्ना विच ये जिहड़े जकारे छड़दे ने सति श्री अकाल दे, इन्हां दी आवाज ना पवे। तो कुछ मसंदा ने आके सतगुरु पातशाह चरणा ते बेनती की, महाराज बड़ी डर वाली गल है, बड़ा एक अनोखा चैलेंज औरंगजेब का होया है, सतगुरु आपां लड़ाई झगड़े विचों की लैना है, ते कृपा करो कि आपां एक भोरा फुट लईए, आप जी नूं असीं मशवरा दिंदे हां। सारे कट्ठे होके मशवरा देण लगे सतगुरु पातशाह जी, ध्यान देना, सारे कट्ठे होके मशवरा देण लगे, कहिंदे सतगुरु पातशाह जी गरीब नवाज जी ये कृपा करो कि आपां एक भोरा फुट लईए, उस भोरे विच बैठ के आपां आस्ता आस्ता हौली हौली पाठ करा करांगे, आस्ता आस्ता बाणी पढ़ लिया करांगे, ते हौली हौली ढोलकी बजाया करांगे, ते उत्थे जकारे छड़ लिया करांगे भोरे विच ही बैठ के, ते आपां की लैणा है लड़ाई झगड़े चो। ते सतगुरु पातशाह जी हस पए, कहिंदे ने तुसां ते इह मन विच ठान लई है, मन विच विचार कर लई है, पर सतगुरु पातशाह कहिंदे मेरे मन विच जो फुरना है ओह वी जरा शरवण करो। सतगुरु पातशाह कहिंदे उन्हें यह ऐलान कर दिता है कि मेरे कन्ना विच ढोलकी दी आवाज ना पवे, नगारा मर दिओ। सतगुरु पातशाह कहिंदे नगारे ते चोट मारो, नगारे ते चोटा वजन, ते सिंह चढ़दी कला विच जकारे छड्डन। ते सतगुरु पातशाह कहिंदे तुसी भोरे दी गल करदे हो, असीं कहिंदे हां खालसे दा जिहड़ा निशान है उच्ची पहाड़ी ते चुल्हे, दूरों दूरों पता लगे कि आनंदपुर साहब दा यह लोहगढ़ दा किला है, यह आनंदपुर साहब की पावन धरती है, गुरु कलगीधर पातशाह विराजमान हैं। तो सात संगत जी सतगुरु पातशाह कहिंदे गुरसिखो, तो सतगुरु पातशाह कहिंदे आ बोल नगारे ते वजने चाहिए ने, ये जिहड़े बोल है धमाकेदार जोरदार वजनदार शक्तिशाली, ये जदों वजणगे नगारे ते देखो फिर ओहदे कन्नां विच जदों गूंजा पैणगे ते पता लगेगा। तो सत जी गुरु कलगीधर पातशाह जी इन्ने अणख, सतगुरु पातशाह जी इन्नी जुरत, इन्नी शक्तिशाली वीरता दे पुंज सतगुरु पातशाह गुरु कलगीधर पातशाह जी तो उच्चारण कर रहे तराना सत्यान देना। दागड़ दी धर्म दिगतांग दागड़ दी दिम दिरना, दागड़ दी दे दे ताल कागड़ दी कुम करना, दागड़ दी दे दे ताल कागड़ दी कुम करना, बागड़ दी ब्रिकते बांग तागड़ दी तोम तोम तिरना, तदर दानी दानी तुम दानी तदर तुम धिरना। अखीर ते सतगुरु पातशाह कहिंदे धीम ते धरना, इहदे विच विचित्र वीणा ते सितार दे बोल।